0: आतिक
1: हरी मांची
0: मुको जोड़ भी कौन दाई दे
1: बालूं बालूं भी तिंग गिया भी तरने
0: कौन में दुलोक का
1: बालूं भी तिंग गिया भी तरने
0: मैं उन हिटों दे इतना गिलाम में कथिल वेलासन नेगी तले बैठे थे अनारी जा
1: हरी हरी तिंग
0: हरी हरी तिंग मगे कुंदे में ट्यून ना कीला उधे इट माव क्या कर सोला एम्बुलेंस का किन्ने करने लेस ट्यून ने पाई हिटों दे तक खुदे खारे तले बैठे ने
1: हरी हरी आदे आदे वितर ने
0: आदे वितर ने पुरुतुर दिया कर लूं दिने ओवा कुछ रुले जाति के दाने आपे
1: जाति के दाने आपे ने
0: अने हन्न वो याद है मेरे कम में भी लू
1: वेलु ने मैं तीन अभी तक तीन आदि सी के तो कोई आदि यान वहाँ ने तीन ने पहनी
0: वहाँ ने तीन हो गई लोग याद है ये मेरे आदि लाया कर पर कुना में भी एम्बुलेंस का बुरकर लगे ने के ने कल्याण को वाटी लोग आदि
1: वाटी ने ना ने
0: वाटी ने ओ अगर वो हरी जरगा तो तीन वसल एक जावर
1: अदा अब एम्बुलेंस के गाड़ी मुको की हुई
0: वो यहाँ वो बेसुअट पास से मामा एम्बुलेंस के नाचर कर गाता
1: ये मुको
0: मामा वेगुलंड के लिए नाचर कर गए ना मैं मामा की हुआ माता हमें तो क्यों लगे जरा गैस के केतले तेल आवा की ला एक और लग में हम हदी सिकर के ना किधर एक कहीं ना आवा
1: वो यार हम मारू हंडे
0: मारू मारू तमाई उन द विलाव टा मामा किधर इंग्या ना कोटे गैस लिपे केतले तेल गैस के दाल लगी है ना तंगे मिनी सेविल बारे ना कोटे गैस लिपे वातरो केतले नो तिबुरा ना ए मिनी सुहिताई मामा बोरु काली की ला
1: मुका
0: उन द विलाव टा मामा गैस से कौन कर ला वातरो एक तेल गी लिपे
1: ඊට පස්සේ
0: මං කිව්වා දැම්මගේ කොන්ද හොඳයි ඔයාලා යන්න කියලා කවුලක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ ගියා.